0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

बिल्कुल उर्दून कुमार देवलेशी सईद अरशद अली आवाज़ एफ एम 94 सबई आवाज़ द अमन आवाज़ द मिनी और द मोहब्बत आवाज़ प्रोग्राम दे दिल भर मस्ती टाइम लक्षण था कि बदल अंदाज बांधे पो बदल लहजे की मुहर्रम चिदनगा स्टार्ट

0: 329, मोबाइल नंबर दे 0303-292-6858।
1: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मुअमल का एक मजबूत तालीम, तालिबात के लिए इस साल भी स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट 5/26 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए आप कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहर मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रब्ता कर सकते हैं।
2: माँ वेले कन काली रावड़ा
3: जो उस्ता शारजी तिंगलार शमा
2: ओ हो पमीना बाजार टोपई की दशारजा ज्वेलर्स दुकान दे चट्टची दुबई और दशारजा टूल वेरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स, फोन 09382732।
4: टूपी मेडिकल केयर सेंटर, टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ते अव इतवार पोरस द शहर 9 बजे नवाखला तरमाजीगर सलूर पूरी डॉक्टर शहजाद फिजियोथेरेपिस्ट द जुमे हफ्ते और एतवार पोरस माजीगर सलूर बजू नवाखला तरमाखाम अतो बजू पूरी और दे सरसरा डॉक्टर इमाद जमान सेब शुगर स्पेशलिस्ट वा द जुमेरात पोरस सहर द 9 बजू नवाखला तरमाजीगर सलूर बजू पूरी ओपीडी कवी 24 घंटे सर्विस लेबर रूम मेडिकल स्टोर अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी जनरेटर सहूलत और पेशेंट मेडिकल वार्ड्स दो पता या साथे टूपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा मेले लाल टूपी मोबाइल नंबर 0335-666-2878 द्वेम नंबर दे 0336-444-5588।
5: तासु आउरे रेडियो दिलबर FM 93।

0: back. Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी, हु कुचरता द दग ज्वानको प वक्त बानी गम उनकलेशी, नु प रारवान वक्त की दग ज्वानकी स्तासु द खाइस द खराबेदो बाइस जुड़ देशी। द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम। तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश। तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा। तुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई। और ये वाज दाना द दग दानो डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम। तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश। तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा। तुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश, बेलाडोना गोल्ड सीरम और द बेलाडोना ब्यूटी किट द यविश पे दे इस्तेमाल सरा खपल मख गुल रंग कई खुश रंग कई आओ स्पिन रंग कई और हगहुम द टू नंबर द पारा द मजीद मालूम तो दोपारा 0393-693-93 बेलाडोना को क्रिएशन बाय डॉक्टर हैदर अली मुमन
1: द चार सदी और द चार सदी सरा द खौशा इलाको द कड़ी दिली बीमारानों दे पारा द खुशहाली खबर द खैबर पख्तूनख्वा मशहूर और मारूफ अस्पताल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल प्राणिस्ता उस्ता सुपखार चार सदा की सुविधा उस द इलाज दो पारा पेखवरता दतलो जरूरत निश्ता मयारी इलाज उस्ता सुपखार चार सदा की अगम द हैदर मुमंद मेडिकल सेंटर न ओली चीप हैदर मुमंद मेडिकल सेंटर चार सदा की सिर्फ रिपोर्टुना कागजुना टेस्टुना न कतले कीगी बल्कि इंसान और द इंसान दर्द कतले कीगी दलता न गैर जरूरी टेस्टुना कीगी न बेला वजह खर्च कीगी सिर्फ द जरूरत मुताबिक इलाज कीगी द डेरु कलुनो द तजुर्बे न बाद और द पोए न बाद मुंग दा फैसला उकड़ला जद खिदमात मुंगला चार सदीता रारसोल पकार दे कतासु डेर कड़ी दिलिए डेर गर्जी दिलिए नोजल मुंगता मुकरा कई औखपल बीमारी मुंगता वाजे उआई औखपल बीमारी द होम्योपैथी द सिंगल रेमेडी सरा पयोसु रजु के दनन दनना मुकम्मल खत्म कई द चार सदी द ब्रांच पता याद लरी मर्दान रोड गुलबहार नंबर 2 बर्फानी लारी सरा हैदर मुमंद मेडिकल सेंटर चार सदा मोबाइल नंबर 0330-30-30-704 इलाज हागा चफर को है बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश नवे नुम और नवे फार्मूला आया था सुदखपल मगद तेर सरी दखाते में दफारा डेर क्रीमों ने इस्तेमाल कर तेर सरे उरक्षी और ब्याराशी आया था सुदमख तेर सरो और दागुनो सास
2: जमा ग्रानो दरनो खगो और पुख्तनो अवरिधन को कतासुम द मखद तेर सरो सरमखीनो
1: सरब इंतहा
2: जदासु मेहरबानी हो कि द मखद तेर सरो दफारा जमोंगा यो डेरा जोरदारा फार्मूला द मख द तेर सरो द पारा जमुंगा यवा डेरा बेहतरीन फार्मूला कम दची वगे कीगी बेलाडोना ऑर्गेनिक क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक फेस वॉश कमची द
1: स्किन बानी
2: तुर्की और इस्तांबुल ना यौदा से बेहतरीन फार्मूला यौदा से बेहतरीन फार्मूला मुंगरा तैयार करेदा
1: मसली
2: खास कर द आग जिनको या द आग अलकानो द पार बे इंतहा डेर ज्यात मुहिम दा या डेर ज्यात जरूरी दा चिकम जिनकई या कम अलकान द मखद तेर सरो सरमगदी
1: सपोरी
2: ता ओ द मखद गा तेर सरी पो मुकम्मल तो गबांदी खत्म वल ग्वाड़ी पो
1: असूर ला
2: मुकम्मल तो गबांदी उर कवल ग्वाड़ी न दहगी द पारा जमुंगा यवा डेरा जोरदारा फार्मूला यानी
1: इस्तेमाल
2: यानी द उरिजु द उबुना तैयार शवी यो ऑर्गेनिक फार्मूला कम किची ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद दी ऑर्गेनिक द द द रियल द आगा खल कोई कनो इदा द दाउ द जल्लू बुटु न तैयार शेविदा नो चिकम द मगद तेर सरो द बार जमंग फार्मूला दा
1: आइसेंस
2: आगा यो ऑर्गेनिक फार्मूला दा ओ दिल मुंग नुम ऑर्गेनिक उम दी द वजन वर कड़े दे
1: टू दे
2: से द वजन मुंग दिल नुम वर कड़े दे जे खास कर दा द सासु द मख तेर सरे
1: किस्म
2: की द जल्ले न खदमई ओ बिया खास कर दा तैयार शुवी द ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स न दानो कचरी तासु द मख द तेर सरो सर मखी द हगी द पारा पो पिंज सवा पनजूस रुपए बांदी
1: दास
2: के जमोंगा बेलाडोना ऑर्गेनिक क्रीम मिलावीगी ओपो पिंज सवा पनजूस रुपए बानी जमोंगा बेलाडोना ऑर्गेनिक फेस वॉश मिलावीगी
1: उम्मीद
2: जान ले द निजदे जनरल और मेडिकल स्टोर ना तरला सके ओ द मख दगा तेर सरोता
1: जनानो
2: मुकम्मल तो कबांदी अलविदा सासुरता प मुकम्मल तो कबांदी अलविदा हुआ
1: नारीनो द पारा द बेलाडोना का
2: दाता सुप हर जेगिजान द पारा अगस्तलेशी
1: मेटिक्स
2: पर दासु द बलुचिस्तानी प बलुचिस्तान के प मुख्तलिफो कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर्स की मिलावीगी के दासु द
1: स्तान
2: सवाबई प सवाबई की प मुख्तलिफो दुकानों की मिलावीगी
1: तुर्की
2: के दासु द चार सदी चार सदी की द दुनिया कॉस्मेटिक्स کاسمیٹکس دکانونو سره ملاویږي او کبیا تاسو د پیخوري نو په پیخور کې خوسم بارځي کې ملاویږي کنه تاسو خو په پیخور کې د هرځي تاسو کې د 400 روډي نو په 400 روډ باندې په پیخور خار کې په حیدر ممند اسپیټال کې د غبلډونو ملاویږي تاسو د کارخانو یې نو په کارخانو کې د ډونا د عزت شاه کاسمیٹکس سره زمونږ د غبلډونو ملاویږي په ملک تاج مارکیټ کې
1: ارګینیک
2: دغرنګي په نورو دنیا په نورو دنیا کا تاسو خو په خبر کې د هرځي تاسو کې د 400 روډي نو په 400 روډ باندې په پیخور خار کې په حیدر ممند اسپیټال کې د غبلډونو ملاویږي تاسو د کارخانو یې نو په کارخانو کې د ډونا د عزت شاه کاسمیٹکس سره زمونږ د غبلډونو ملاویږي په ملک تاج مارکیټ کې
1: ارګینیک
2: دغرنګي په نورو دنیا کاسمیٹکس جنرل

0: है कुछ नया यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। दिक्कत आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801003 पर राबता कर सकते हैं।
1: माँ वेले माले द शारजाने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर शमा
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया का ना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स फोन 09382732 65।
3: टोपी मेडिकल केयर सेंटर कम से चिप मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंद आवाम द खिदमत लपारा मौजूदगी चिपकी डॉक्टर आमिर असलम कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट दैतवार परवज 10 बजो ना तरमा खाम सलूर बजो कोरे लेडी डॉक्टर फरीहा मुश्ताक फिजियोथेरापिस्ट द फिर न तर जुमेरात रस कोरे सहर 9 बजो ना तरमाजीगर सलूर बजो कोरे डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट दैतवार परवज 11 बजो ना तरमास्पिन 3 बजो कोरे गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिर अमराज जच्चा बच्चा द पीर नतर हफ्ते पूरी माजीगर द सलूर बजो ना तरमास होतन 8 बजो पूरे बाओपी डिकवी जमू सहूलियात ती 24 घंटे सर्विस लेबर रूम अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी पेशेंट मेडिकल वार्ड जनरेटर और नोटो जरूरी सहूलियात मौजूद थी नो पता याद साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर आयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335-686-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
5: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।